भाई संबत सत्रह सहस पण जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय भाद्रव सुधि अष्टमी रावारा तीरस्तद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्र पखिया ने त्रया चरित्र मंत्री भूप संवाद 405 चरित्र समापत मस्त।

अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब आरियन संगारो प्रथम तरु भगवत को त्याना बाहर करूं कब तबे दो नाना कृष्ण जथा मत

बिघ्न विनाशन सोए पतत पावन भगत वशल कृपा निदान रहमतां दे सागर गुरु गरीब निवाज

0: राम नाम नार निसबा सुर मैं निमख एक और तारे।
1: इथे भी ममे दी दुलावां नाल ही पाठ है, मैं हाहे दी सिहारी दे सहत पाठ नहीं है। राम नाम नार निस, राम नाम नार निस बासुर मैं निमख एक और तारे।

मंगण जाइए फिर ओ लामा मिलै तही राम कली महला पहला जग पर बोध है मड़ी बधाव है आसन त्याग काहे सच पाव है ममता मोह कामन हितकारी ममता मोह कामन हितकारी ना औधुती ना संसारी जोगी बैस रहो दुविधा दुख भागै

सतगुरु जी नूं चौंकी दे उपर बैठा के ते साहा गिण लगा कहन तो भाव के केड़ा दिन रखना है, आनंद कारज दा विआह दा दिन केड़ा रखना है। तां सतगुरु जी ने हरदयाल पुरोहित नूं पावन पवित्र उपदेश बख्शिया। गुरु के प्यारे सिखां नूं भी ये सिख्या दित्ती है सतगुरु जी ने के साहा गण है ना कर है विचार, साहे उपर एकंकार कहन तो भाव है के साहे

सुख थी है। कार्य अपराध सरण हम आया, गुर हर भेटे पुरब कमाया। गुर सरण ना आईए ब्रह्म ना पाईए, भरम भुलाईए जन्म मर आईए। जमदर बाधो मरे बिकार, ना हृदय नाम ना शब्द आचार। एक पादे पंडित मिसर कहावह, दुविधा राते महल ना पावह। जिस गुर प्रसादी नाम आधार, कोट मध्य को जन्म जन आपार। एक बुरा भला सच एक है, बूझ ज्ञानी सतगुर की टेकै। गुरमुख विरली एको जानिया, आवन जाना मेट समानिया। जिन

0: हठ निग्रह कर काया छीजै, वर्त तपन कर मन नहीं पीजै, राम नाम सार अवर ना पूजै, गुर सेव मना हर जन संग कीजै।
1: पूजै पाठ थोड़ा जिहा कस के जिवें ज्ञानी जी ने उचारण कीता, पूजै नहीं कहना, पूजै जिवें उचारण होया।
0: जम जंदार जोहे नहीं साकै, जम जंदार जोहे नहीं साकै, सरपन डस ना सकै, हर का रस पीजै रहाओ। वाद पड़ै रागी जग पीजै, त्रैगुण बिखिया जन्म मरीजै, राम नाम बिन दुख सहीजै, चाड़स पवन सिंघासन पीजै, न्योली कर्म खट कर्म करीजै, राम नाम बिन बिरथा सास लीजै, अंतर पंच अगन क्यों धीरज तीजै, अंतर चोर क्यों साध लहीजै, गुरमुख होए काया गढ़ लीजै, अंतर मैल तीर्थ परमीजै, मन नहीं सूचा क्या सोच करीजै, किरत पया दोष का कौ दीजै, अन्न ना खाहे देही दुख दीजै, बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं थीजै, मनमुख जन्मै जन्म मरीजै, सतगुर पूछ संगत जन कीजै, मन हर राचै नहीं जन्म मरीजै, राम नाम बिन क्या कर्म कीजै, ऊंदर दूंदर पास तरीजै, तुरकी सेवा राम रवीजै, नानक नाम मिलै किरपा प्रभ कीजै, राम कली महला पहला, अंतर उत्पुज अवर ना कोई, जो कहियै सो प्रभ ते होई, जुगह जुगंतर साहब सच सोई।
1: साहब पाठ हाहे दी सिहारी तो बिना शुद्ध है, जिवें ज्ञानी जी ने उचारण कीता, उचारण होवेगा साहब, पर हाहे दी सिहारी दे सहित जिहड़ा पाठ लिखती है उहदा उचारण साहिब बनदा है, पर हाहे दी सिहारी इत्थे शुद्ध नहीं। सो साहब ही उचारण करना, जुगह जुगंतर साहब सच सोई।
0: उत्पत परलो अवर ना कोई, ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर, जिन जपया

जियो जल बल जाई। सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना त्रिपताव है भेवा। शब्द विचार गह गुर सेवा, मन तन निर्मल अभिमान।

गर्भ जाय मन भीनै झूठ न पावस पाखंड कीनै बिन गुर शब्द नहीं घर बार नानक गुरमुख तत् बीचार राम कली महला पहला ज्यो आया त्यो जावह बौरे ज्यो जन्मे त्यो मरण भया ज्यो रस भोग किए तेता दुख लागै।

0: बख्श लया जिन एहो चाख्या राम रसायण तिन की संगत खोज भया रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ सरण पया।
1: साध संगत जी एदी जमक दा विशेष ध्यान रखना जिदा ज्ञानी जी ने उच्चारण कीता है रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान इथे जाके जमक लाउणी बुद्ध पाठ ते ज्ञान नहीं लाद जमक नहीं ला देनी रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ सरण पया।
0: दुख सुख गुरमुख सम कर जाना हरख सोग ते बिरकत पया
1: बिरकत ही पाठ करना बिरकत नहीं करना बिरकत पया।
0: आप मार गुरमुख हर पाए नानक सहज समाए लया राम कली दखणी महला पहला जात सत संजम साच दृढ़ाया साच शब्द रस ली।

0: की छूटे सतगुर सच सखाई राम कली महला पहला आओ हठ हस्त मड़ी घर छाया तरन गगन कल धारी
1: ओ अलग ते हठ अलग साध संगत जी जिवें उचारण किया गया है एवं ही करना औहठ पाठ इकट्ठा नहीं करना पोथियां दे विच जां सरूपां दे विच इकट्ठा छाप दिता गया है पर उचारण अलग अलग ही करना औहठ हस्त मड़ी मड़ी पाठ जिहड़ा है भारा करना मड़ी घर छाया धरन गगन काल धारी
0: गुरमुख केती

एकस स्यो चित लाए सहसा टूटै निर्मल होवै जोग जुगत इव पाए नदरी आवदा सब किछ बिनसै हर सेती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सोजी पाए एहो जोग ना होवै जोगी जे कुटंब छोड़ पर भवन करह गृह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लह है एहो जगत मिट्टी का पुतला जो

रचना जिन रचाई सच्चा शब्द रवै घट अंतर सच्चे स्यो लिवलाई सत संगत मह नाम निर्मोलक वड़े भाग पाया जाई भरम ना भूला।

0: नानक एक कह बेनंती नावहो गात पात पाई।
1: राम कली महला तीजा। हर की पूजा दुलंब है संत कहना।

वर्णन सके महिमा जो तिहारी, हम ना सिफते कर सकत तुम्हारी। आप ले ओ तुम कथा सुधारी, कहाँ लगे एहो कीट बखाने। महिमा तोर तो ही प्रभु जाने।

गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उंज ते शरीर दा हर अंग अपने आप दे च कारामद है, महान है और उसकी महिमा वर्णन नहीं कीती जा सकती। हर अंग महान है लेकिन फिर भी किसी जगह पे पहुंचना है तो पहले रास्ता दिखाई दे दे। रास्ते दा दिखाई देना बड़ा लाजमी है। फिर चलन वास्ते पैर भी होवन। विखाई देंदा है चलन दी तौफीक नहीं, रस्ता देखे आया व्यर्थ हो गया। लेकिन मैं अर्ज करा चलन दी तौफीक है, रस्ता ते

उतारन जो सरगा कर से विदे गुर पार उतारन। सत्संग जी तकरीबन 3.5 मिनट हो गए है ते सतगुरु बख्शिश करन महापुरुष भी खिमा करन। बड़िया के सिर ते मौज हुंदी है, बड़िया का जे छोटे हिस्सा लै लैन बड़े बोल नहीं सकते। इस करके ना सतगुरु महाराज कृपा करन भाई आओ महापुरुषों के कोलों सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

0: to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद।

0: हंत गुबारा
1: हर का नाम संग उजियारा
0: जह पंथ तेरा को ना समझानू
1: हर का नाम तह नाल पछानू
0: जह महा भयान तप्त भव काम
1: हर के नाम की तुम ऊपर शाम
0: जहां त्रिखा मन तुझ आकर्ष है
1: नानक हर हर अमृत बरख है
0: भक्त जना की बर्तन नाम
1: संत जना के मन विश्राम
0: हर का नाम दास की ओट
1: हर के नाम उदरे जन कोट
0: हर जस करत संत दिन रात
1: हर हर औखद साध कमात
0: हर जन कह हर नाम निदान
1: और ब्रह्म जन कीनो दान
0: मन तन रंग रते रंग एक
1: नानक जन कह व्रत पवेक
0: हर का नाम जन को मुक्त जुगत
1: हर कह नाम जन को तृप्त भुगत
0: हर का नाम जन का रूप रंग
1: हर नाम जपत कब परे न भंग
0: हर का नाम जन की वडियाई
1: हर कह नाम जन शोभा पाई
0: हर का नाम जन को भोग जोग
1: हर नाम जपत कछ नाहे बियोग
0: जन राता हर नाम की सेवा
1: नानक पूजे हर हर देवा
0: हर हर जन कह मालिक दीना
1: हर तन जन को आप प्रभु दीना
0: हर हर जन कह ओट स्थानी
1: हर प्रताप जन अवर न जानी
0: बोध बोध जन हर रस राते
1: सुन समाध नाम रस माते
0: आठ पहर जन हर हर जप है
1: हर का भक्त प्रकट नहीं छपे
0: हर की भक्त मुक्त बहु करे
1: नानक जन संग के ते तरे
0: बार जाते हो हर को नाम
1: राम तेन हर हर गुण गाम
0: सब ते उत्तम हर की कथा
1: नाम सुनत दर्द दुख लथा
0: नाम की महिमा संतरित बसे
1: संत प्रताप दुर्त सब नसे
0: संत का संग बट भागी पाई है
1: संत की सेवा नाम ते आई है
0: नाम तोल कश अवर न होए
1: नानक गुरमुख नाम पावे जन को श्लोक
0: बहु शास्त्र बहु सिमृति पेख सर्व टंडोल
1: पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी
0: जाप ताप ज्ञान सब ध्यान
1: शस्त्र सिमृत व्याख्यान
0: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया
1: सकल त्याग बन मध्य फिरिया
0: अनक प्रकार की बहु जतना
1: उन दान हूँ मैं बहु रतना
0: शरीर कटाई हूँ मैं कर राती
1: व्रत नेम करे बहु पाती
0: मही तुल राम नाम विचार
1: नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार
0: नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीव
1: महा उदास तपी सर थी वह
0: अगन माही हुमत पुराण
1: कनक हसब है भरपूर दान
0: न्यौली कर्म करे बहु आसन
1: जैन मार्ग संजम साधन
0: निम्क निम्क कर शरीर कटावे
1: रोवी हम मैं मैल न जावे
0: हर के नाम सम सरकश नाही
1: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे
0: मन कामना तीर्थ देश छुटे
1: गर्भ गुमान न मन ते हुटे
0: सोच करे दिन सर रात
1: मन की मैल न तन दे जावे
0: इस देही को बहु साध न करे
1: मन ते कबहु न दिखिया टरे
0: जल धोवे बहु देहे अनीत
1: कहा होए काची भीत
0: मन हर के नाम की महिमा ऊच
1: नानक नाम उदरे पतत बहमूच
0: बहुत सियाणप जम का भव व्यापे
1: अनक जतन कर तृष्ण ना द्रापे
0: एक अनेक अगन नहीं बुझे
1: फोटो पावदर गहने सिजय
0: छूट सुनाही ऊप पयाल
1: लोहे व्यापे माया जाल
0: अवर करतूत सगली जम डान
1: गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै
0: हर का नाम जपत दुख जाए
1: नानक बोले सहज सुभाए
0: चार पदार्थ जे को मांगे
1: सार जना की सेवा लागे
0: जे को अपना दुख मिटावे
1: हर हर नाम हृदय सदगावे
0: जे को अपनी शोभा लोरै
1: सत संगे हम शोरै
0: जे को जन्म मरण ते डरै
1: सार जना की शरणी परै
0: जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा
1: नानक ताके बल बल जासा
0: सगल पुरख में पुरख प्रधान
1: साध संग जाका मिटे अपमान
0: आप सुको जो जाने नीचा
1: सहु गनिया सब ते ऊंचा
0: जाका मन होए सकल की रीना
1: हर हर नाम तिन घट घट चीना
0: मारे अपने ते बुरा मिटाना
1: देखै सकल सृष्टि साजना
0: सुख दुख जन सम दृष्टिता
1: नानक पाप पुन नहीं लेपा
0: निर्धन को धन तेरो नाओ
1: निथावै को नाओ तेरा था
0: नमाने को प्रभ तेरो मान
1: सकल घटाको देवो दान
0: कर्म करावन हार स्वामी
1: सकल घटाके अंतर जामी
0: अपनी गतमित जानो आपे
1: आपन संग आप प्रभ राते
0: तुमरी उस्तत तुम ते
1: नानक अवर न जान सकोए
0: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
1: हर को नाम जप निर्मल कर्म
0: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया
1: साध संग दुर्मत मल हरिया
0: सगल उद्यम में उत्तम भला
1: हर का नाम जपो जी सदा
0: सगल बानी में अमृत बानी
1: हर को जसन रसन बखानी
0: सगल थान ते हो उत्तम थान
1: नानक जे कट वसे हर नाम श्लोक
0: निर्गुण यार ए अन्या सो प्रभु सदा संभाल
1: जिनकी आतिस चीत रख नानक निभही ना अष्टपदी
0: रमैया के गुण चेत पुरानी
1: कवन मोहते कवन दृष्टानी
0: जिन तू सास सवार सिंगारिया
1: गर्भ अगन में जिने उबारिया
0: बार व्यवस्था तुझे प्यारा दूध
1: पर जो बन भोजन सुख सूद
0: बिरद पया ऊपर साक सैन
1: मुख्य पया हो बैठ को दैन
0: एहो निर्गुण गुण कुछ न बुझे
1: बख्श ले हो तो नानक सीजै
0: जय प्रसाद धर ऊपर सुख बस है
1: सुत भरात नीत बनता संग हसै
0: जय प्रसाद पीवे शीतल जला
1: सुखदाई पवन पाव के मुला
0: जय प्रसाद भोगे सब रसा
1: सगल समग्री संग सात बसा
0: दीने हस पाम करन नेत्र रसना
1: इसे त्याग अवर संग रचना
0: ऐसे दो कमूड़ अंध व्यापे
1: नानक काड लियो प्रभ व्यापे
0: आदि अंत जो रखनहार
1: ऐसे प्रीत न करे गवार
0: जाकी सेवा नव नित पावे
1: ऐसे मूड़ा मन नहीं लावे
0: जो ठाकुर सर सदा हजूरे
1: जाको अंधा जानत दूरे
0: जाकी टहल पावे दर्द हमान
1: ऐसे बसारे मुग्धा जान
0: सदा सदा एव भूलन हार
1: नानक रखनहार अपार
0: रतन त्याग कौडी संग रचे
1: साच छोड़ झूठ।

ता प्रेत देवे सो धर्मे। नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त।

स्वरूप नमो शर्माने समस्ति निदाने नमस्तवंग नरनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग पंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृसंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा रिद सिद्धंग निवासी चारपट शांत प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्म अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पहने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग तराणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल शांत प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मान तर मान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जत्र तत्र विराजहि।

के सर्वत्र गावन है के सर्वत्र पावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज के सर्वत्र राज के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के

निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, भर भूत प्रभा है, सुजूत सदा है, सदैव स्वरूप है, भेदी अनूप है, समस्तोपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तल सलाम है, सदैव काम है, दर्बाध स्वरूप है, गाध है, अनूप है, ओअंग आध रूप है, अनाध स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सो सर्वानुराग सो सर्वानुरागे त्रिभूत स्वरूप है, अछेज है, अछूत है, कनरकं प्रणास है, पृथ्वी अल प्रवास है।

सर्वंगहंता सर्वंगंता सर्वंगख्याता सर्वंगयाता सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ता सर्वंगप्राणं सर्वंगतराणं सर्वंगकर्मं सर्वंगधर्मं सर्वं

भागं बेपूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बेपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रकामे त्रिपंगी त्रकामे।

रे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे एत भय तो का भय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरा सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदांग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भवेख भवान के भूपत कौन गाना नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमार सबान के पेख है पौन आहार जति जत तहार सब सब चार हजार के देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है स्वद सिपाह दुर अंत दुबाह सो साज सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरे आर अब चार हिसार की तार पछैया तोर तदेश मलेंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हर सो बातन ही चाक चार लवैया साहेब श्री सब को सिर नायक जाच कनेक सो एक दवैया दानव देव अपने दन साचर भूत भवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन परतापन बाढ़ जात तुन पापन कह बहु पुंज खपेंगे साध समूह परसान फिर जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरात अब जोन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद कदान अनेक सुअंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पात

दुष्ट जिते उठवत उत पाता सकल मलेच करावरण काता जिया सतोजत अवसर नहीं परे तिनके दुष्ट दुख तो मरे पुरुख जावन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सवटा।

सेवा सकता आप उपाय क्या करता आपे हुकम वरताए हुकम वरताए आप वेख्या गुरमुख सब बुझाए तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन बसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक सस्यो लेवलाए कह नानक आप करता आपे हुकम बुझाए सिमरत सा

0: ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਂਦੇ ਨੇ? ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਸੰਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੱਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਜ਼ਾਲਿਮ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰਸ਼ੀਨ ਦੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਲਖਨਊ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਦਿਆ ਭਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੁਕਤਸਰ। ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ, 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ, ਪਰਦੇ ਚ ਰੱਖਦੇ। ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਰਨ, ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਭਤੀਜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੜਪਾ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਜਵਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਖਤ ਨਾ ਖੋਲ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ ਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਆਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਸਬੀਹ ਫੇਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੋ ਅੱਲਾਹੋ ਜਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਇਤਨੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਰਸ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਸਤਿਆ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਤਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਲੇਕਿਨ ਫਕੀਰ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੱਲ ਆਵੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ ਕੋਲ, ਕੱਲ ਆਵੇ। ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੈਸੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਤੀਵੜੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਵੱਟ ਵੇਖ ਕੇ, ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਤਨੇ ਉਦਾਸ, ਇਤਨਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਰਜ਼ੀ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ ਹੱਸ ਪਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਹੱਸੀਦਾ। ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ, ਬੜੇ ਉਸਦੇ ਖਲੀਫੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। वो ते महान है। जेबुल साह ने एक दलील बड़ी प्रबल दिती है, अब्बा हजूर अख विच कोई रड़क पै जाए और खास करके दोवें अखां च कोई कंकरी पै जाए, अखां वेखण तो असमर्थ हो जांदियां। फिर वो कंकरी अखां नूं नहीं दिखाई देंदी, दूजे नूं कहना पैंदा मेरी अख च की पै गया, अख दे चे तौफीक नहीं देखण दी। मैं उस फकीर नूं दसांगी तेरी अख च एक कंकरी है तो कड्डां वे। उस अर्जी दे थले एक शेर लिख दिता, ईरान अफगानिस्तान भारत देश पाकिस्तान देश बंगलादेश, ये शेर बड़ा मशहूर है शायरां दी दुनिया च विद्वानां दी दुनिया च। दर सुखन पिन हांशो दम दर बरगे गुल मानिंदे बो, हरचे दीदन महलदारी दर सुखन बेनद मरा, ये शेर लिख लेता। आख्या बापू ए अब्बा हजूर दे देना उस फकीर नो, शर्मसार होवेगा रोएगा। वाकई इस शेर नो पढ़ के फकीर शर्मसार होया, माफी मंगी। दर सुखन पिन हांसु दम दर बरगे गुल मानिंदे बो, हरचे दीदन महलदारी दर सुखन बेनद मरा। ये जो कुछ वो कह रही है, मुख्तसर में अर्ज करा, दो मनुख एक बगीचे दे कोलो लंघे जा रहे हैं, ते बगीचे दे चारों पासे फसील है, उच्ची दीवार है, बगीचे च बड़े सुंदर सुंदर फुल ने, महक बाहर आ रही है। एक कहिंदा है कितनी मधुर सुंदर महक आई है गुलाब दी, दूसरा कहिंदा है किथे है गुलाब, कहिंदा होवेगा किधरे, सानू महक आ गई, दिल दिमाग मुअत्तर हो गया। अगे जाके फिर कहिंदा कितनी मधुर कितनी सुंदर महक आई है नरगिस दी चमेली दी मोगरे दी, पर ये किथे ने फुल होणगे किधरे, महक आई है मुअत्तर हो गए। जेबुल नसा कहिंदी है जिसनू महक विच फुल दे दर्शन नहीं होए, जिनू सुगंधी विच फुलां दे दर्शन नहीं होए, उन्हों फुल दे दर्शन करने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। ऐ फकीर मेरी महक ते मेरे बोलां च सी, मेरी सुगंध ते मेरे बोलां च सी, ते मेरे बोलां च मैनू तू नहीं देख सकया, क्योंकि हड मास नाड़ी दा पिंड पिंजर आके देखेंगा, जिहड़ा अज है ते कल नहीं, की देखेंगा। मैं ते प्रगट हां अपने बोलां च, दर सुखन पिन हांशु दम दर बरगे गुलमा नंदे बो, जिमें महक फुल दे चाहते फुल तो प्रगट होंदी है, इस तरह बोल मेरे अंदर सन ते मैं बोलां दे राही बार प्रगट होईआं। तू मेरे बोलां च मैनू नहीं देख सकिया, दर सुखन पिन हांशु दम दर बरगे गुलमा नंदे बो, हरचे दीदन महलदारी दर सुखन भी नद मरा। कटाक्ष भी कीता, लगदा है तेनू जुकाम है नजला है, तेनू सुगंध नहीं आई महक नहीं आई, तो पूरा मुअत्तर नहीं होया। परमात्मा प्रगट है अपने शब्द विच, शब्द विच प्रभु दी झलक ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, शब्द नाल जुड़ना कठिन है, जुड़ना कठिन, क्योंकि शब्द वेखण दा विषय नहीं है, ते मनुख ज्यादा प्रभावित होंदा है वेख के, शब्द वेखण दा विषय नहीं सुनन दा विषय है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे, दोनों में ध्यान ध्यान में जाने गुरमुख अकत कहानी। अज दे दिन जब धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संवादना करके प्रकाश किया, पोथियां सारियां संग्रह करके लंबी चौड़ी दास्तां ते कथा, उस दिन एक कथा हुई है दरबार साहब दे, उस तो बाद कथा दरबार साहब दे नहीं हुई, बाहर हुई है मंजी साहब, भाई गुरुदास मंजी साहब कथा करते रहे हैं और उसे याद अजे तक कथा आती है। पर एक कथा उस दिन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दरबार साहब के अंदर आप की, वो जड़ी कथा है कवि संतोख सिंह जी ने गुरप्रताप सूरज दे लिखी है, मैं थोड़े सामने रखा। साहब उथे कहते हैं, सतगुरु के शरीर है जो सब थान समय सब ना दर्शे हैं, मेरा जड़ा शरीर है ये दर्शन सारी जगह ते कोई नहीं, और ये अज है ते कल नहीं है। सतगुरु के शरीर है जो सब थान समय सब ना दर्शे हैं, हर जगह इस शरीर के दर्शन नहीं कर सकते और हर वक्त भी नहीं कर सकते। ग्रंथ रिदा गुरु को एव जानो उत्तम है सब काल रहे। गुरु दी आत्मा प्रभु दी जोत गुरु ग्रंथ साहब नो करके जानो उत्तम ने हर समय विच ने हर जगह ते ने। जंगल विच बैठ के अगर जपजी साहब का पाठ किसी ने आरंभ कर दिता है गुरु मेरे संग सदा है ना। सफर विच है सुखमनी साहब का पाठ आरंभ कर दिता है गुरु मेरे संग सदा है ना। घर विच बैठा है कांध विच बैठा है इन्हें राज साहब का जप शुरू कर दिता है तो गुरु मेरे संग सदा है नाल है। जो सदा संग नहीं हो प्रभु भी नहीं, जो सदा संग नहीं हो गुरु भी नहीं है। यह भी मैं करते हैं प्रकाश दे रूप दे परमात्मा सदा संग है, शब्द दे रूप दे गुरु सदा संग है। उस सदा संग गुरु दा अज दे दिन हरिमंदर साहब धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के रूप गुरु अर्जन देव जी महाराज ने प्रकाश किया। आख्या मेरे स्वरूप ते साहेब है धीरथ, मेरे स्वरूप तो वड्डा करके जाना। मैं खुद पुजारी हूं। मेरे स्वरूप ते यहां ते है धीरथ साहेब जान अदायब कह। ये मेरे साहेब ने, मैं इन्हों का गुलाम हाँ, मैं खुद पुजारी हूं। गुरु अर्जन देव जी मेरे स्वरूप तो वड्डा करके जान, मैं खुद पुजारी हूं। गुरु अर्जन देव जी वो शब्द है जो परमात्मा तो आया, ईश्वर तो आया। जिस शब्द तो सारा संसार आया वो शब्द जिसनों सुनाई दे जाए संत है भगत है, पर जो सुन के प्रगट कर देवे वो अवतार है। महाराज कहने मैं चुप हो गया, मैनू जो कुछ सुनाई देता है ब्रह्मंड दे जगत दे लोको तुसी सुन लो। जैसे मैं आवे खसम की बाणी फैसला करी ज्ञान वे ला लो। खदीजा ने मोहम्मद साहब न सुन के कहा कि बोल थोड़े नहीं हो सकते, इतने तरतीब देच और इतने ज्ञानमय और इतने रसदायक कि थोड़े बोल नहीं हो सकते। मोहम्मद साहब की अखां भरिया हुई सन, अश्क बार अखां नाल कहन लगे खदीजा तू ठीक समझे मोहम्मद ते चुप कर गया, शायद हुण नहीं बोल सकेगा। जो तू सुनया ये खुदा नु ही सुनया, मोहम्मद ते हुण नहीं बोल सकेगा, मोहम्मद ते चुप कर गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हो आपो बोल ना जानदा हो कहा सब हुक्म आप। हुण ते मैं बोलना जानदा ही नहीं, गल खत्म। हुण जो कुछ बोलदा है खसम ही बोलदा है, परमात्मा बोलदा है, ईश्वर बोलदा है। उस ईश्वर दे बोल सुनने जिसनों नसीब होवन खुश किस्मत है, जिसनों जुड़ना नसीब होवे वो ते जीवन मुक्त हो गया, तो जीवन मुक्त हो गया। इतनी सेवा प्रवान करनी। हम एक शब्द सुनो आनंद साहब का पाठ से समाप्ति। रोज 8 to 9 दास थोड़ी सेवा करेगा, गालवन थर्सडे तक वीरवार तक। उम्मीद है आप समय से पहुंच गए, सतगुरु की हाजिरी भरोगे, बोल चुक की क्षमा तुम बड़े एकाग्रता टिकाओ न सरवण किया। बार बार सारे का धन्यवाद, फतेह प्रवान करने। वाहेगुरु जी का खालसा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Baad and Sardarni Surinder Kaur Baad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-7790.
2: ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ?
3: ਹਾਂ ਜੀ।
2: ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਪਕਾਈਏ?
3: ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟੀ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ।

0: तेजे सब्जी भल खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.

0: प्राइस दीजिए सब्जी फल खाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: कब गल लावेंगे प्रभु मोहे

0: ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਜਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ। ਉਦਾਸੀ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ ਚਾਰ ਦਫਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸਜਿਓ ਉਦਾਸੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਪੇਖ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਹ ਬਾਣਾ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨੇ ਹੈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ? ਭਗਵਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਇਆ ਤਿਆਗਿਆਂ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜਿਓ ਉਦਾਸੀ, ਕਿਉਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਬਣ ਗਏ? ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜਿਓ ਉਦਾਸੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੇਖ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਿਸ ਵੱਖਰ ਕੇ ਤੁਮ ਬਣ ਜਾ ਰੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਾਥ ਲੰਘਾਓ ਪਾਰੇ। ਇਹ ਰਾਮਗੱਲੀ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਤਾਈ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ, ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਗਤ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣਾ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣਾ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਮਾਮੂਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਹੌਲਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਾਨ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਸਨ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਪਾਂਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬੋਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ ਜਾਪ, ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚੱਲ। ਹਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਵੇਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬੋਝ ਉਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਜਦ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧੜਾ ਧੜ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਪਾਂਧੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਮੇਰ ਦੇ ਜੋਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੱਦਾ ਦੇ ਖਾਨਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਹਾਜੀ ਮੌਲਵੀ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੋਏ, ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ। ਦੱਸੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਸਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ? ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀ ਹੋ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਆਮਾਲ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਉੱਚੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਮੇਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜੋ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣਾ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੇਗ ਨੇ ਵਾਸੀ, ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਰਕੇ ਕੁੰਵਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਾਥ ਲੰਘਾਓ ਪਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭੈ ਉਦਾਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਤਾਈ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਹਮ ਵੰਡਾ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਤਰਸ ਪਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਣਜਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣਾ ਪੈਣ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਵੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ, ਪੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ, ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਣ ਲਿਆ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਬਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੇ 'ਚ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਤਨੀ ਫਰਾਗ ਦਿਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਾਗ ਦਿਲੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛੜ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਛੜ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁੱਲ 200 ਮੀਲ ਦਾ ਭਰਮਣ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਿਆ। ਖੱਚਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਕੁੱਲ 300 ਮੀਲ ਦਾ ਭਰਮਣ ਹੈ, ਈਸਾਈਅਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਭਰਮਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾਨਕਿੰਗ, ਨਾਨਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਬੋਧ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬੋਧ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਠਹਿਰੇ, ਬੋਧ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾਨਕਿੰਗ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ। ਬਰਮਾ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ, ਸਿੱਕਮ ਗਏ, ਭੂਟਾਨ ਗਏ, ਤਿੱਬਤ ਗਏ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਰਸ਼ੀਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਅਰਬ, ਲੰਕਾ, ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਭਰਮਣ ਔਰ ਇਤਨਾ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹਤ ਕਰਕੇ, ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਲਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਟੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, 3 ਕਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤ ਕਵੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੰਤ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੰਤ ਕਵੀ ਰਾਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਫਕੀਰ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ, शायद आपनों पता होगे गुरु नानक दे बारे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने बड़ी कीमती नजम लिखी सी। शमा हक से जो मुनव्वर हो वो ये महफिल न थी, बारिश रहमत हुई पर जमी काबिल न थी। ऐ गुरु नानक तू कदम कदम दते सच दा दीवा जलाया पर महफिल ते अंधियां दी सी, किसी ने अखा ही नहीं खोलिया। तो कदम कदम दते रहमत दी बारिश की थी पर जमी काबिल न थी, जमीन ते बंजर सी। मेहनत तो गुरु नानक बहुत की थी, उस मेहनत दा फल असी नहीं देखते। इकबाल इंज कहिंदा है। लाहौर दे जद वापस आया ते लाहौर दे पतवंतियां ने शायरां ने आलम फाजला ने उहदे स्वागत समारोह विच बहुत वड्डा जलसा रखिया। इहदे विच अच्छे अच्छे साहित्यकार कवि दार्शनिक फिलोसफर इकट्ठे होए। कुछ कवियां ने अपने कलाम सुनाए, कुछ शायरां ने अपने कलाम सुनाए ते फिर उन्हां सारिआं ने इकबाल नूं कहा तुसीं कुछ सुनाओ। लेकिन भरे जलसे दे चों इकट्ठ दे चों मंग आई, तुसी जेड़ा यूरोप दा भ्रमण करके आए हो, सारे यूरोप दा, असी होर कुछ नहीं सुनना चाहते, तुसी ए दसो हिंदुस्तान दा धर्म ते यूरोप दा धर्म इहदी मुशाबत करो, तुलनात्मक गल करो, कंपेयर करके दसो किथे महानता है, तुलनात्मक गल करो। बड़े ध्यान नाल सुनना कीतीए तुलना, इसने कीतीए तुलना सुनाया है। कहिंदा बहुत देखे हैं मैंने मशरिक और मगरिब के मैखाने, यहां साकी नहीं मिलता वहां बेजौक है सावा। वो धर्म नो शराब नाल तशबीह देंदा है। दूर क्यों जाओ, नाम भी एक नशा है पर होश दा नशा है, शराब भी एक नशा है बेहोशी दा नशा है। शराब पी के ते मनुख अपना नाम भी भुल जांदा है पर नाम दे नशे दे किन लोकां दा ज्ञान हो जांदा है। सरूर है एक मस्ती, ये भी एक अलग प्रकरण है। कि शराब बनाने दा ढंग भी गुरु ग्रंथ साहब जी दसदे ने, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ भाव बाटी तन धारा, सुखमन नारी सहज समानी पीवे पीवन हारा, ओधो मेरा मन मतवारा उनमन चढ़ा मदन रस चाकया, त्रिभुवन भया उजारा। सत अठ शब्द ने नाम दी शराब किवें बनाई दी। और गजब दी गल है, नंद लाल जैसा महान शायर गुरु गोबिंद सिंह नूं साकी कहिंदा है। विदेशा की मरायक जाम अजां रंगे नहीं है दिल, ऐ मेरे साकी एक जाम मैनू भी दे। पता है साकी किनू कहिंदे ने, जिहड़ा शराब पिलांदा है। नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह नूं साकी कहिंदे ने और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख नूं साकी कहिंदे ने जफरनामे च। विदेशा की या सागरे सबजे गो के मारा बघारस्त जंग अंदरों, ओ साखी अकाल पुरख नूं कह रहे। हे मेरे साखी एक घुट मैनों पिला ताकि मेरी सारी जिंदगी पावन हो जाए, यही नंद लाल कहते ने। विदेशा की मारा यक जाम अजा रंगीनी है दिला, बचश्मे पाक भी आसा कुनम ए जुमला मुश्किल। इतने उदाहरण में स्वासे दिते देने नहीं सन, कई कच्ची मत वाले आंदे भी की आखदा। इकबाल कहिंदे ने हर चंद हो मुशायद हक की गुफ्तगु, हक कहिंदे ने सच नो। असी पंजाबी उर्दू च सच कहिंदे हैं, हिंदी दे च सत कहिंदे ने, फारसी ते अरबी दे च हक कहिंदे ने। हक दा मतलब है सच, हकीकत सच्चाई, हक सच, हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। है गुरु गोविंद सिंह थानू वेख के हक दा पता चलता है, भाव सच दा पता चलता है, थोड़े विचों सच टपकता है, थोड़े रोम रोम विचों सच झलकता है। नंदलाल ऐसा कह रहे हैं। हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। फिर हुण इकबाल कहिंदा है, हर चंद हो मुशायद हक की गुफ्तगु। कहिंदा सच दी गल किधरे छिड़ पवे, ते अगला मंगे प्रूफ सबूत सच की आउंदा है, की आउंदा है। ध्यान नाल सुनना, हर चंद हो मुशायद, मुशायद मुशायद तुलनात्मक, तुलना कोई करना चाहे आखे दसो सच दी तुलना करके दसो, किसे नाल स्पष्ट करके दसो, किसे चीज नाल तुलना करके दसो। हर चंद हो मुशाहिद हक की गुफ्तगु, बनती नहीं है सागरो मीना कहे बगैर। कहिंदा मैं प्याले दी तरफ सुराही दी तरफ इशारा कर देंगा, सच एक नशा है, सरूर है, नाम हमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। एक सरूर है, एक मस्ती है, किधरे संजोग बनया समा बनया, ते इस मस्ती सरूर दे संबंध च कोई 15-20 शब्द ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर, गुरु नानक देव जी दे, गुरु अर्जन देव जी दे और भगत कबीर। मैं इन्हां सारिआं नूं संग्रह कीता है, इन्हां नूं टेपां दी शकल किताबां दी शकल ते मैं दित्ती है, पर किधरे लंबी विचारधारा चलदी उत्थे इस नूं मैं संगत दे च रखदा हुंदा। इस वेले इक नुक्ता, जद लाहौर दे पतवंतियां ने, साहित्यकारां ने, अदीबां ने, विद्वानां ने, कवियां ने यह आख्या, यूरप दा धर्म ते भारत दा धर्म तुलनात्मक करके दसो, तुलना करके दसो। और असी कुछ नहीं सुनना, और असी जानदे हां यूरप दे धन दे विच ओ अग्गे है, बहुत प्रगति हुई है, बहुत तरक्की कर चुके हैं, भारत तो अग्गे सानू पता है। असी धर्म दी गल जानना चाहते हैं। तो इकबाल दसदा है, बहुत देखे हैं मैंने मशरिक और मगरिब के मैखाने। मशरिक पूरब, मगरिब पश्चिम। कहिंदा पूरब ते पश्चिम दे मैं मैखाने शराबखाने देखे ने। बहुत देखे हैं मैंने मशरिक और मगरिब के मैखाने, यहां साखी नहीं मिलता वहां बेजौक है सावा। कहिंदा यूरोप दी शराब किसे कम दी नहीं, ना सरूर ना मस्ती ना गहराई। कहिंदा फिर भी पीण नूं जी करदा, क्यों? प्याले बड़े साफ सुथरे ने, साकी दे पेश करन दा ढंग बड़ा वधिया है, अंदाज बड़ा वधिया है, पीण नूं जी करदा। फिर कहिंदा भारत दी शराब बड़ी गहरी है, बड़ा सरूर है, बड़ी मस्ती है। कहिंदा प्याले बड़े गंदे ने, पेश करन दा ढंग बड़ा गंदा है, पीण नूं जी नहीं करदा, पीण नूं जी नहीं करदा। हुण प्याले कौन, किन्हां नूं प्याले कह रहा है, किस नूं साखी कह रहा है? जो धर्म दा प्रचार कर देने, जो धर्म दी गल सुना देने, ब्राह्मण ने, मौलवी ने, या साढ़े सिख जगत दे गुणी ज्ञानी ने, या मुखी सज्जन ने। कहिंदा नहीं, नहीं, ते प्याले गंदे ने, पेश करन दा ढंग ठीक नहीं है। कहिंदा भावें शराब च मस्ती है, बड़ा सरूर है, बड़ी गहराई है, पीण नूं जी नहीं करदा, क्यों? साकी दे हथ बड़े गंदे ने, प्याले बड़े गंदे। कहिंदा यूरोप दी शराब, भावें बाइबल दे कुछ भी नहीं, कोई गहराई नहीं, गुस्ताखी माफ, किसी धर्म ग्रंथ की मैं निंदा नहीं कर रहा, कहानियां ही कहानियां ने, कोई बहुत गहराई नहीं है। कहिंदा उस शराब दे कोई सरूर नहीं है, कोई मस्ती नहीं है, लेकिन कहिंदा प्याले इतने चमकते हुए ने और इतने सुंदर ने कि साकी दे प्याले नूं पेश करन दा ढंग इतना वधिया है, क्रिश्चन बनन नूं जी करदा है। इकबाल कहिंदा बहुत देखे हैं मैंने मशरिक और मगरिब के मैखाने, यहां साकी नहीं मिलता वहां बेजौक है साबा, बड़ा सियाणा पुरुष सी, दो पंक्तियां च सारी गल कह गए। नौ खंड पृथ्वी च जिस ढंग नाल गुरु नानक ने प्रचार किया सी, इकबाल ने बाद च तनज की सी, बीज नौ खंड पृथ्वी च बोए ने गुरु नानक ने, इस बगीचे नू माली चंगे नहीं मिले, सारा ही बगीचा उजाड़ के रख दिता, उजाड़ के रख दिता, जिम्मेवारी नहीं महसूस की किसी ने। खैर एवें टूक मात्र गल आ गई, मैं अर्थ कर दिती है। धन गुरु नानक देव जी महाराज जोगियां कोल जांदे ने, जोगियां दे बाणे च, मक्के च जांदे ने मुसलमानां दे बाणे च। जिस बांडे तुसी गल लेना चाहते हो, सुनना चाहते, मैं सुनाण नूं तैयार, मैनूं कोई इतराज नहीं। पीर दस्तगीर इतना मुतासर होया, बहलोल शाह उसका नाम सी, ते दस्तगीर उसका तखल्लुस सी, जिथे इराक दे बगदाद के अंदर गुरुद्वारा बने होया, यह पीर दस्तगीर की जगह है, अज भी उत्थे उसकी कबर बनी है, कब्रिस्तान दे गुरुद्वारा है, मलकीयत पीर दस्तगीर दे वारसां दी है, अज भी वह वारस उत्थे मजौर बन के बैठे ने, जगह उन्हां दी है। इस सदाम ने इजाजत दे दी सी गुरुद्वारा बनाने, तो उत्थे गुरुद्वारा है। उत्थे धन गुरु नानक देव जी महाराज की उपमा लिखी हुई, किसने लिखाई? पीर दस्तगीर ने लिखाई, उस समय लिखाई, रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक, चार पंक्तियां जिहड़ियां थले ने, 500 साल पुरानी अरबी है। अज दे अरबी लोग पढ़ते लेंदे सन, अर्थ नहीं आउंदे सन। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पुराने बुजुर्ग लभ के उन्हां तो अनुवाद कराया, गुरुद्वारा गजड़ दे च छपिया सी, मैं उस खड़े दियां फोटोआं भी लियांदियां सन, अनुवाद मैं थानू सुनावा जो छपिया है। रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक, यह तो कोई भी पढ़ लेगा, जो उर्दू जानता है, फारसी जानता है, इसनों पढ़ लेगा। यह वड्डे हरफां च लिखा है, रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक, थले जड़ियां चार पंक्तियां ने, रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक इत्थे आए, उन्हां दी कदम बोसी दे नाल आबे हयात दा चश्मा फुटिया, अरब दी तपदी होई जमीन सरसब्ज होई। शायराना अंदाज विच ए लफ्ज, इतना ही मैं फिर दोहरावां, रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक इत्थे आए, उन्हां दी कदम बोसी नाल आबे हयात दा चश्मा फुटिया, जिदे नाल अरब दी तपदी होई जमीन सरसब्ज होई। ए फड़ी अज भी लगी हुई है, उत्थे लगी हुई है, थड़ा बनया, उसी थड़े ते गुरुद्वारा बनाया। जब पहली दफा मैं गया सी, उदों सिंह बिल्कुल नहीं सन, एक सिंधी परिवार की दुकान सी, उन्हों मैं किधरे गुरु नानक की फोटो देख के अंदाजा ला लिया, यह कोई सहीदारी वीर है। उस नाल सारी गलबात की, कहन लगे थे कोई सिंह नहीं, उन्होंने नचन सन 73 की गल करदा, फिर मैं 78 भी गया सी। मैं एक सेंची दे आया, चौथा भाग सी धन गुरु ग्रंथ साहब का, उस मजौर नो मैं कहे गुरु नानक का कलाम है, ये थड़े देते सजा के रखे, रोज चादर नवी बिछांदा सी, धो के साफ करके प्रेस करके, जिवें कब्र देते नवी चादर चढ़ांदा सी रोज साफ सुथरी, इस तरह थड़े से कब्र दे उते रोज गुलाब दे फुल रखदा सी, थड़े ते भी रखदा सी। जद मैं उन्हों कहा एक कलाम है गुरु नानक दी, कहंदे हैं गुरु नानक दी कलाम, मैं कहा उन्हें सिर ते रख लिया। मेरा बार बार शुकराना कीता, तुसी उन्हां दी कलाम मैनू दित्ती, हुण ते गुरुद्वारा बन गया, महाराज दा स्वरूप भी जो है चला गया। कहण तो मुराद नौ खंड पृथ्वी दे गुरु नानक दा प्रचार, उम्मत साड़ी 2 करोड़ भी नहीं है। इकबाल कहिंदा इस चमन नूं माली ठीक नहीं मिले, गुरु नानक दे लाए हुए बूटे सुका दिते, उजाड़ के रख दिते, नौ खंड पृथ्वी चला। खैर विचकार गल आ गई सी, मैं इतनी फड़े नाल अर्ज की है, जितने चिर तक मनुख संसार तो निराश नहीं, उदास नहीं, वो परमात्मा की तलाश नहीं करेगा। निराश उदास 3 कारण करके आंदा है। प्रथम, बड़ा गहरा स्रोता होवे, शब्द चोट कर जाए। दूसरा, अपनी अकल चोट कर जाए। तीसरा कोई संसार को चोट लग जाए, उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। उदास ते निराश बंदा तीन तरह का फैसला करेगा, केड़ा? आत्म क्रांति, आत्म हत्या, आत्म विस्मृति। खुद नू बदलना या खुद नू भुलाना या खुद नू मिटाना, इन्हां तिन्हां दे चों एक चुनाव करेगा। जो शब्द की चोट खा चुके है वो ते अपने आप नू बदलेगा, आत्म क्रांति करेगा। बाकी दोहां तो खतरा है, हो सकता है किधरे अपने आप नू खत्म करे या अपने आप नू भुलाण की कोशिश करे। कल सारा खुलासा मैं थोड़े सामने रखे, पर उन्हां दे चों भी कदी कदी ऐसा होया संसार तो चोट खा के, अकल तो चोट खा के उन्होंने अपने आप नू बदलण की कोशिश की थी, संत बनने की कोशिश की थी, प्रभु दे मार्ग दिते उन्होंने अपने आप नू तोरिया। हुण जिहड़ा शब्द तो चोट खा गया, किसी थां तो चोट खा के अपने आप नू बदल रहा है और प्रण करदा है, ऐ गुरु हुण मैं तेरे ढंग नाल जीवांगा, जो तू कहना है मैं तेरे ढंग नाल जीवांगा, जिस तरह तुसी कहंदे हो। ते वाकई अमृत वेले उठन लग पवे, जप तप करन लग पवे, रहत वहत रख लवे, सब कुछ कर लवे, 10-20 साल हो जान ते होवे कुछ भी ना। हुण बड़े ध्यान नाल सुनना, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, मैं समाप्ति करा, भई निराशी बहुत दिन लागे, देश देशांतर में सगले जागे। पहले संसार तो निराश होके उदास होके परमात्मा की तलाश से चल पिया, हुण परमात्मा तो भी निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। क्यों? 10-20 साल लग गए, बहुत दिन लग गए। गुरु अर्जन देव जी महाराज, भई निराशी, निराशा पैदा हो गई कितों? परमात्मा से। पता नहीं कुछ है भी सही कि नहीं, कैवे ही चल पाया निराशा। भई निराशी बहुत दिन लागे, देश देशांतर मैं सगले जागे, खिन रहन ना पाओ बिन पग पागे, होए कृपाल प्रभ मिले सवागे। निराशा पैदा हो जाती है। इस रस्ते देख सतगुर जानकारी करा रहे ने, एक पड़ाव ऐसा भी आ जाता है निराशा घेर लेंदी, पता नहीं कुछ है भी सही के एवें मैं अमृत वेले टकरा पिया मारदा, घंटा दो दो घंटा जप पिया करदा और सारी साधना पिया करदा, कुछ है भी सही के नहीं। निराशा जागेगी। उस निराशा भरी हालत विच मनुख दो फैसले कर सकदा है, उन्हां दो फैसलों का जिक्र करके मैं समाप्त करा खुलासा कल। पहला गलत फैसला, नास्तिक हो सकता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बंगाल दा केशव चंद्र महान धार्मिक मनुख, सारा सारा दिन जप करने वाला, अद्धी अद्धी रात नूं उठ के जप करने वाला नास्तिक हो गया सी। उन्हें तीन किताबां नास्तिकता ते लिखियां। बंगाल दे जो अज 50 सालां तो कम्युनिस्टां दी हकूमत चली आ रही है, ठीक है कम्युनिज्म दा प्रचार भी है पर इहदे च केशव चंद्र दा हथ भी है। वो कहिंदा सी, अन्न अन्न ते होत है, घास घास ते होए, त्यों मानुष मानुष ते करता अवर न कोय। अन्न तो अन्न पैदा हुंदा है, घास तो घास पैदा हुंदा है, पशुआं तो पशु पैदा हुंदे ने, मनुखां तो मनुख पैदा हुंदे ने। रब नूं विचकार लैण दी की लोड़ है? कोई रब नहीं, कोई परमात्मा नहीं। केशव चंद्र बंगाल जे 50 साल तो कम्युनिस्ट है ते कम्युनिस्टां दी हकूमत चली आ रही है, उहदे केशव चंद्र दा भी हथ है। पर यह बड़ा धार्मिक मनुख से महान नास्तिक हो गया, महान नास्तिक हुए। मैं सिख जगत दे भी कुछ चोटी दे दाना सियाने मनुख जानना नास्तिक हो गए, यह भी मैं अर्ज करता स्टेज उते कई ना लेना। पर ऐसा नहीं है कि पहले आस्तिक नहीं सन, सब कुछ करते सन। हालत यह हो गई भाई निराशी, पहले संसार तो निराश होके परमात्मा की तलाश की थी, हुण परमात्मा तो भी निराश हो गए। ऐसी हालत च गलत फैसला तो यह हो सकता है कि नास्तिक हो सकता है। पक्का नास्तिक, खतरनाक नास्तिक वो होता है जो पहले धार्मिक होता है, यह भी मैं अर्ज़ करता। दूसरा फैसला कि हे प्रभु मैं जो कुछ करना सी कर लिया, हे गुरु जो कुछ मैं करना सी कर लिया, इहदे नाल कुछ नहीं होया, तू रहमत कर, तो बख्शिश कर। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ, ਗਾਲਨਾ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਧੁਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਲੜੀ ਕੱਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਬੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Radio Station 1550 AM Gurbani Segment Tuhade Tak. Swargwasi Sardar Ajit Singh Ji Baad, Swargwasi Mata Surinder Kaur Baad Di Yaad De Vich 1550 AM Ton Gurbani ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1550 ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 604-961-7790 604-961-7790 1550 AM ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: एजेंट लई तुहानू चाहिदा है एक अजिहा रियल्टर जो तुहाडे लई काम करे जिस ते तुसी भरोसा कर सको जो तजर्बेकार होवे। अजिहे ही एक रियल्टर हन गुरदयाल सिंह बाद जो अपने 35 सालां तों वध दे तजर्बे नाल रीमैक्स दे टॉप प्रोड्यूसिंग रियल्टर्स विच शामिल हन।
1: मार्केट दी पूरी समझ अते तुहाडे भरोसे ते पूरे उतरणगे गुरदयाल सिंह बाद।
0: सो हर तरह दी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फॉर्म अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी संबंधी सही सलाह लई अज ही गुरदयाल सिंह बाद नूं
1: 604-351-5111 ते कॉल करो। 604-351-5111 गुरदयाल सिंह बाद।

0: Market.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: फैमिली केयर फार्मेसी
3: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
3: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
2: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
5: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.
6: सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने ਪਟ ਕੀਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵੱਈਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਵੱਈਏ ਦਾ संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नु जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भगती कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती हुई प्रेमा भगती दा सदका हजूर दे अंग संग रहण वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआ उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिते। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकथ है। साड़ी एक जबान साड़ी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਪੈ ਕਰਦੇ। ਆਓ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਅਕੀਦਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਸ ਮਲੀਨ ਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾ ਲੈਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ ਆਸੀਸ और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो कृपालता फिर

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जान्यो, धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो, धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिमें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन किया। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थकां सिर जुलां, जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हथ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने, इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बाल दिया ने। तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थकां, जे पैरां नाल चलदिया होया थक जावां, सिर जुलां मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरा ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द भी वरतने हैं कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हैं, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है, कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं, हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं, इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल, जमीन दे विच पैदा होए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख,
परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुंना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगासी बिगसै सहज सुबाही। हुण कमल दा फुल जिहड़ा ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा ओ आसमान विच है, दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी ओहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। ओह किहड़ी ताकत है, ओह किहड़ी मिकना ती शक्ति है कि जिहड़ी इस कमल दे फुल नूं चिक्कड़ विच खिड़े होए नूं पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हां कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक, कि गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने ए ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने, चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोनां दी दूरी है। ना तो चकोर नूं किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जां किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उन्हूं सिखाया कि आओ देख रात नूं चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नूं एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नूं किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच ऊ पैदा होए चंद्रमा नूं देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालां कि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नूं देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा है आसमान ते एक टिक उहनूं नजर टिका के देख दीए, चंद्रमा जदों ये अपनी थां सारी रात बदलता है अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उन्हें ए नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नूं अपने जिस्म नूं घुमाना है, उहदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नूं उन्हें सवेर तक लेंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नूं सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नूं ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़दी है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उन्हूं अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी गर्दन नूं झुका के अपनी पिठ ते ला लैंदी है ते कई वारी ओदी गर्दन झुकना भी ओदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओ केड़ी खिच है, चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दित्ती, चकोर नूं किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर लई कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नूं जे किते मनुख समझे उसे खिच नूं ही प्रेम किया गया है। हुण ओ दिस नहीं रही पर ओदा चंद्रमा नाल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचों अर्ज कर रहे हैं, भाई साहब ने पहला बचन किया, चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, प्रेम है ते ओ एक टिक चंद्रमा नूं देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लाणी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे ने देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टिक हो के चंद्रमा नूं देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले,
चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले। हुण इत्थे भावे शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है। दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने तां अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानन विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण इक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा ओदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी ओदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी ओदी सोचन दी शक्ति नहीं, मनुख जितना ओ कोई कार विखार भी नहीं कर सकदा, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं सकून नहीं जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओह केड़ी खिच है जेड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती की एक टेक होके ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा की है। कमल विच खिच है सूरज नूं देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले, नेहो कवल जल जानिए खिड़ मूंह बखाले। हुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन तां ओही है, छप्पड़ टोबा तां ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओह पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जेड़ी दिसदी नहीं ओह खिच पानी विचों उहनूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन किया, कहन लगे मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उहनूं देख के खुश हुंदा है। हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है, ओह असमान दे उत्ते ओह धरती दे उत्ते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पहला पान लग पिया ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार ले बखेर ले। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारीए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपिया कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदों खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा है भादों दा, उदों पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा है, ओह वी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकार लग पिया है। उहदे विच वी इक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणू मां ते पुत्तर दी भी इक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी इक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है प्यारिया, कि पानी जेड़ा वो सुख सकदा है, कमल फुल मुरझा सकदा है, चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै सकदा है, चमकदे कोई बदल दूर जा सकदे ने, मोर ते बबीए विलकदे रह सकदे ने, मां ते बाप साथ छड के जा सकदे ने, नार ते पतार दा प्यार है पर मौत प्यार नूं विछोड़ सकदी है, पर गुरु ते रब दी प्रीत ऐसी है जिस खिरदे विच टिक जाए सच जाणो ए प्रीत मरन तो बाद भी कदी नहीं टुटदी। ए कैसी प्रीत है, भाई साहब ने प्यार दी व्याख्या करदिआं बहुत सोहणी ए पौड़ी कही, चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले,
चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले न्यू कवल जन जानिए खिड़ मूह बखाले मोर बाबी ये बोल दे वेख बदल काले नार पतार प्यार है मां पुत संभाले पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है पीर मरीदा पिर हड़ी ओ निभ है नाले के मरीद दी ते पीर दी जेड़ी प्रीत है ओ तोड़ निभन वाली ओ रस्ते विच टुटन वाली नहीं। आप तवज्जो देना गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती की थी। ते जदो असी बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्हां ने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नूं मुखातब करके प्यारे नूं प्यार करन दे कुछ जुगतां सानूं दसियां। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना हां कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दियां रहाओ दियां तुकां ने रहाओ दे बचन ने मन रे क्यों छूटे बिन प्यार हे मेरे मना की परमात्मा नु प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा है की तू बंधना तो मुक्त हो सकना परमात्मा नु प्रेम करन तो बिना मन रे क्यों छूटे बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा सारिया थावां ते रव्या है ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नू फिर समझिए मन रे क्यों छूटे बिन प्यार प्यार तो बिना प्रेम तो बिना उस परमात्मा नू कदी तू खुश नहीं कर सकदा। गुरु तो बिना तेनू प्रेम करन दी जुगत नहीं आउणी। वैसे तां जे इंसान नू समझ पै जाए कि प्रेम प्रीत प्यार ने ये जितने भी शब्द असीं वरतने आ जे इंसान दे शरीर अंदर तन अंदर परमात्मा दी प्रीत नहीं प्यार नहीं ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने प्राण प्यार तो प्रीत तो बिना जिहड़े मनुखां दे तन ने कहिंदे ने मानो ओ तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुरदे सड़ के किते मिट्टी दा ढेर हो जा। ओ तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्यार है मरे कोई शरीर विच कोई हरकत नहीं ते जिस मनुख दे जिस्म अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं सच जाने ओ खाए भी पीए भी बोले भी पर गुरु दी नजर विच एक ओ जिंदा लाश है ओ मुर्दा है जे उस अंदर प्रीत नहीं ता प्यार तो बिना छुट नहीं सकदा। हजूर दे बचन सी पढ़ने हैं अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत ए सारे गुण होण दे बावजूद भी मृतक कहीं नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। बाबा नानक जी कह रहे ने मन रे क्यों छूटे बिन प्यार मृतक कहीं नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। जे उस परमात्मा ली प्यार नहीं ते सच जानी ओ शरीर मुर्दे दे समान है उस शरीर दा कोई अर्थ नहीं ओ मुर्दे नु जितना मर्जी कोई शिंगारी जाए ते उस दा अर्थ की है कुछ भी नहीं। हजूर ने कहा प्रीत तो बिना बाबा फरीद साहब दे बचन सी पढ़ने उन्होंने जोबन की गल की हुण जवानी अपने आप विच परमात्मा की एक बड़ी वड्डी दात है ते जे किसे बंदे दे कोल जोबन भी है पर जोबन होने के बावजूद उस दे अंदर प्यारे की प्रीत नहीं ते मेरे धन गुरु ग्रंथ साहब विच बाबा फरीद साहब कहिंदे ने प्रीत तो बिना मनुख दा तन शमशान भूमि है प्रीत तो बिना ता जवानी सड़ के राख हो जाए उदा करना की है। बाबा जी ने अमृत बचन कह जोबन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए किन्ने जोबन जानदा वक्त दे जानदा समय दा जानदा सानू कोई डर नहीं। डर तां उदो है जदों वक्त समा जा जोबन जा जीवन परमात्मा दे प्रेम तो बिना चला जाए सिमरन तो बिना चला जाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनिया गजलां विच पहला शेर ही ये क्या है पहली गजल दा कहन लगे खवाए बंदगी आ वुर्द दर वजूद मरा ए मिनसान तू वजूद विच ता आया है कि परमात्मा दी इबादत करे परमात्मा दी बंदगी करे जे परमात्मा दी बंदगी नहीं सी करनी ते फिर इस वजूद विच इस तन विच आउण दा लाभ की। कहन लगे फिर एवें आसमान दे थले अपनी जिंदगी दे दिन प्या कटना बंदगी करके ही जिंदगी है
जे बंदगी नहीं ते सच जानी फिर जिंदगी नहीं। हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा, वगर ने जो के चुनी आमदन नाबूद मरा। जे उस परमात्मा दी इबादत नहीं ते या अल्लाह या रब मेनू इस शरीर विच रहन दा कोई शौक नहीं, क्योंकि तेरी बंदगी दे शौक करके ही मैं जी रहा हां। प्यारियो तवज्जो दिया जे, बाबा नानक जी ने प्रेमा भगती की ते मैं अर्ज करना पिया बाबा जी दी बाणी विचों पुछ लीए कैसी प्रेमा भगती उन्हां कीती। उन्हां ने विच प्रमाण दिता मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, ते बाबा फरीद कह लगे हकीकत है कि जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए। फरीदा कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए, के किते जवानी प्यार तो बिना ना चली जाए, साई नू नेह करन तो बिना ना व्यर्थ चली जाए। सच जानो उस महापुरुष दी कली जवानी ही नहीं जोबन विच नहीं, वो ता अपने बचपन तो ही रब नू इश्क करन लग पए। बाबा फरीद साहब अजे बचपना है ते कुरान उना नू जबानी कंठ हो गई है, अजे बचपना है कि कितना कितना समा रब दी इबादत भी जुड़े रहिंदे ने। आखर वो कैसी परम अवस्था मिली कि जिदन जमीन ते पई कोई खाक मिट्टी अपने मुंह दे विच पाई ते उस मिट्टी विचों भी शक्कर वर्गा स्वाद आ गया। क्यों? अपना अंदर इन्ना कु मिठा हो चुका सी, आप मिठास दे भंडारे बन चुके सन। ते हकीकत एवे असी कहांगे मिट्टी मिठी हो गई, जमीन ते मिट्टी मिठी नहीं होई, असल विच बाबा जी दी रसना दी मिठास करके मिट्टी भी मिठी हो गई। उस महापुरुष वो आप शक्कर गंज है, शक्कर दे खजाने ने। उस महापुरुष ने क्या कहन लगे, जोबन चला जाए प्रीत तो बिना, जवानी चली जाए प्यार तो बिना, जिंदगी दा समा निकल जाए प्रीत तो बिना, ते ए अंदर नू दुख पासदा है। केवल जोबन नहीं अपने अंतले समय भी ओ महापुरुष रब दी इबादत भी जुड़िया है, खुदा दी इबादत भी जुड़िया है। ते जदो नमाज अदा पे करदे ने अचनचेत गशी पई है, बेहोश होके जमीन ते गिर गए, सजदा पूरी तरह कर ना सके। मुरीदा ने बाबा फरीद साहब जी नू संभालिया, संभालन तो बाद उन्होंने बाबा जी दे जदो तलियां पैरां दियां चशियां, उन्होंने खत पकड़ के खत पैर कुटे नपे ते उठ के बैठ गए। ते पहला प्रश्न सी उस महापुरुष ठीक है, कहन लगे नमाज अदा हो गई, मेरा नेम निभ गया, बंदगी वाला समा सही सफल हो गया। बैठे हुए मरीद ने क्या बाबा साहेब नमाज पूरी तौर ते अदा ना हो सकी पूर्ण तौर ते, आप इको दम जमीन ते डिग पे। कहन लगे लियाओ पानी, कराओ मेरा वजू, मैं परत के फिर खुदा दी याद भी जुड़ना चाहना, मैं नमाज अदा करनी चाहना। ते किसे ने उथे प्रश्न कर दिता सी के बाबा साहेब सारी जिंदगी ता अल्लाह ताला दी विरद विच ओदे जिक्र विच ओदी याद विच बतीत होई, हुण जे नई नमाज हो रही शरीर खेचल विच है, तन नू थोड़ा बहुता खेद है, हुण अज तुसी ए रहन दियो विश्राम करो। उन्हां ने उसे वेले पिछे मुड़ के कहा, कहन लगे तेनू की पता मेरा अंदर किथे खलोता होया है, तेनू केवल मेरी बाहर दी क्रिया दिसी है कि मैं इन्ने साल रब दी इबादत कीती, इन्ने साल मैं परमात्मा दा जिक्र कीता, पर तेनू की पता मैं अंदरों किथे टिकया वा। लियाओ पानी, लियाओ आव, ते मैं वजू करके परमात्मा दी याद भी जुड़ा, रब दी याद भी जुड़ा। वो महापुरुष कह रहे ने कि वक्त चला जाए प्रीत तो बिना ते व्यर्थ है। बाबा नानक साहब कह रहे ने मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, प्यार तो बिना तू प्रेम तो बिना तेरी बंद खलासी निखोनी। हुण प्रेम बद्दा चक्की कर्म नहीं, प्रेम ता एक अंदर दी खिच है, प्रेम ता आपां वारन वाली एक अंदर दी बिरती है। ते धन गुरु नानक साहब कृपालू ने अपनी अमृत बाणी विच ए उदाहरणा दित्तियां। उस अष्टपदी दी पहली एग्जाम्पल पहली उदाहरण ए वे मैं अर्ज कर रहा नानक नाम ने दित्तियां। उस अष्टपदी दी पहली एग्जाम्पल पहली उदाहरण ए वे मैं अर्ज कर रहा नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिबलाई।
कैसी भगती की थी? केवल ता केवल चौंकड़ा मार के नहीं, अपने आप नू पूर्ण तौर ते रब दे चरना विच उना ने फिदा कर दिता, उना ने समर्पित कर दिता। बाबा नानक जी ने उस फिदा होण वालियां कुछ उदाहरणां नू अपनी बाणी विच दर्ज कर दिता। पुछया सचे पातशाह, ए ता आप कह रहे हो कि प्रेम तो बिना बंद खलासी नहीं, पर ए दसो प्रीत कैसी करिए, प्यार किहो जिहा करिए? कृपालू दाता जी ने पहला प्रमाण दिता है, कहने कमल दा फुल पानी विच खिड़िया है। सिर्फ उदाहरण समझन लिखा है, अपनी जिंदगी दे टुकान वास्ते ना, के ए उदाहरण केवल विद्वता दी अंदर दी खौन प्रगट कर ले। कथा दा मतलब है कि विचार के, सुन के, पढ़ के, को के उदे अनुसार अपना अमली जीवन भी ढालना शुरू कर देना। कमल दा फुल पानी विच खिड़िया है, पानी दे विच निक्कियां निक्कियां तरंगा पैदा हुईयां, लहरा पैदा हुईयां, ते जदों पानी दी लहर इकोदम थोड़ी जी हवा नाल तेज होई ते कमल दी नाड़, कमल दी निक्के जे बूटे दे तने नूं वजी, कमल दी नाली नूं वजन दी देर सी पानी दी लहर, ते कमल जेड़ा जड़ तो लै के फुल तक पूर्ण तौर ते कंब गया। इकोदम उस लहर ने कमल नूं पछाड़िया, कदी उनू लहर धक्का मार के खब्बे, कदी सजे, उनू सारा दिन लहर अपने ठोकरां दे वास विच केवल

आत्मक्रांति करेगा या आत्महत्या करेगा या आत्म विस्मृति करेगा, खुद नो भुलाण की कोशिश करेगा, दिन रात शराब के नशे जी रहेगा, ड्रग्स खाएगा, अपने आप को भुलाएगा, चेते कुछ भी ना आए। क्यों चेते आएगा? तो निराश है, उदास है। उदासी किस तरह रवे? सब कुछ तो निराश है, किस तरह रवे? निराश होया मनुख, उदास होया मनुख, या तो आत्म क्रांति करेगा, खुद नो बदलेगा, या आत्महत्या करेगा, खुद नो खत्म करेगा, या आत्म विस्मृति करेगा, खुद नो भुलाएगा। शब्द तो जिसनों चोट लगी है सत्संग रेच, ये आत्महत्या नहीं करेगा, ये आत्म विस्मृति भी नहीं करेगा, ये आत्म क्रांति करेगा। ऐ गुरु, अज तक मैं अपने ढंग नाल जीवदा रहा, हुण मैं तेरे ढंग नाल जीवांगा। अज तक जिसने इस तरह का फैसला नहीं किया, शब्द ने अजे चोट नहीं की थी उसनों, ये भी महज कर दे। उदास ते निराश अपनी अकल तो होया या संसार तो चोट खा के होया है, तो सही फैसला करने की थां ते गलत फैसला भी कर सकता है। किसे किसे ने सही फैसला भी किया, आत्म क्रांति में कल जिक्र करांगा, उन्हें खुद नूं बदलिया है। लेकिन ऐसा भी आंदा है, खुद नूं भुलाने की कोशिश करेगा, दिन रात नशे चूर या सुसाइड करेगा, आत्महत्या करेगा, खुदकशी करेगा। जिन्हें आत्म क्रांति की नहीं सोची, जिन्हें आत्महत्या की नहीं सोची, जिन्हें आत्म विस्मृति की नहीं सोची, अजे इसनों चोट नहीं लगी, अजे ना निराश होया ना उदास होया। बाकी का खुलासा मैं थोड़े सामने कल करांगा, समय की उलंघना ना करा। दरबार साहब के आए हुए महान कीर्तनी है, बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, रब्बी रस बनता है। आप समय सिर आया करो।